जिजान ब्रह्मं कर्मं सब फूकट निश्चो कर्मं कहनान निश्चो त्यावै विण सतगुर वाट न पव पवड़ सुहावना।

कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद मैं मन वड़ी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावां हों जाए पूछां अपने सतगुर गुर पुछ मन मुग्ध समझावां जीता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारी दया करहो कश्मीर उपाओ डूबदे पत्थर चतारे चित चितवो अरदास कहूं पर कह पे ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हाँ तको तेरे हुक्म पवे निशान तौ करो साहिब की सेवा जब गुरु देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा

दास कारण करण जिव तू रख तिव रहूं। पैस माद सुना ज्ञान है आसन चढ़ियो त्रम तनुख कर गयो भगत सील सर लड़ियो। पै निरपाओ हर अटल मन शब्द गुर नेजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंड्यो। पलो पुहाल तेजो तना नृपत नाथ नानक बर गुरु अमरदास सच सलपण तें दल जितो इव युद्ध कर। हम अवगुण भरे एक गुण नाई अमृत शाड बिखै बिखाही माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो हो गुरसंगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला चौथा कार दूजा

जिस कारण हों शिंगार शिंगारी सो पिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन पिर रावड़िया सच सवरा हो जाए पुछा सुहाग सुहागणा

माता तरत महत दिवस रात द्वैदाई दाया खेल सकल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ती मुख उजले किती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ती मुख उजले किती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभु की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया दयालु हुआ पर ब्रह्म स्वामी।

सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी कर कृपा आपनो कर लीना, मन वस्या अविनाशी

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं।

मेरा दुख सुख तुझी पास, जा के सिमरन सब कछ पाइए बिरथी कार न जाई। तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो, जो सब में रहया समाय। जा के सिमरन होए आनंदा,

सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रकाश, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मान चितवहे उद्दम, जा आहर हर जियो प्रया, सैल पत्थर में जनते उपाए, ताका रिजक आगे कर धरया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बैंता, कोई ना किसकी तरया, सिर से रिजक समाही ठाकुर, काहे मन पाओ करया, उड़े उड़या मैं सैकोंसा, तिस पाछे बचरे छरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पर व्रिया, सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल त्रिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पर व्रिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार, सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा, सब ते आवहे सब ते आवहे तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर ते आव हो संतो जी, सब दुख विसार नहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना, इक दाते इक पेखारी जी, सब तेरे चोज बढ़ाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्या वहीं हर त्या वहीं तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त भय, जैना हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब भगवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहि जपहि बेअंता,

0: ਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੇ ਵੜਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹੇ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੇ ਕਾ ਜਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆ ਰਮੈਂਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹੋ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰੀਆ ਹੋ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਤੁਝ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇ ਵਿਯੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਯੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਸ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣਹੇ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੇ ਪੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹੇ ਕੀਆ ਪੰਖ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ ਮਨ ਇਕ ਨਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਪ੍ਰਣੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸ੍ਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬੀਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਾਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਕਾਬ ਹੋ ਆਵਹਾ ਦੇ ਮੁਹਿ ਬਚਾਵ ਹੋ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮੋਰ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ मोरच्छा निज कर दे करिए सवैरन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें चाड़ को ही अबर ना ध्याऊं जो बर जहां सुदम ते पाऊं सेवक सिखा मार तारिए चुंचन शतर हमारे मारिए आवाद दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हो जो सदा हमारे पछा श्री सो जो करियो रक्षा राघल ओ महे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहो पुरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुबारा नमस्कार है तहें हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रण को पलम वध कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी दे कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट की पढ़ पढ़ की जाने जब दर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख कर तुहों कबहूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जिते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरित निरालम जानत वेद वेद अर आलम रंकार निर्विकार निरलंब आदे अनीर अनादे संभ ताका मूड़े चारत पिदा जाको पेवन पावत बिदा ताको कृपाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत न भिव आप अपनी बुध है जेती वरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा इकै रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमड भयो शंकर अकेठा सगरी सृष्ट दुखाए अचंभव आद जोगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबारे सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणगाता जे हस्त तव शरणी बरे तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार थे है ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो, ताके ताप तनक मै हरे हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट शहा शवै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें सवारा, काल भांसती ताहे अवारा, जिन नारायण नाम तिहारो का, दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे दे हो बारी, सर्व ठोर हो सहाई, दुष्ट दुख ते दे हो बचाई, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठोर हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, सवैया मैं गहे जब ते तुम्हारे, तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान, हरेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहुभेद कहे हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुम भी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हारो द्वार, मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार, सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हारो द्वार, मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार, राम करी महला तीजा अनंत, इक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ना पाया सह सेती, मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा, मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब में सारना अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा, क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किच है, जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरा सच नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैनो भुखा सब गमैया, कर शांत सुख मन वसया, जैनो इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बटह, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुन हो संतो, शब्द धरो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पाई शब्द तित कर सपाके, कर सपाके शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दो तुद वासे कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे, कहे नानक तसुक हुआ, तित घर अनहाद बाजे, आनंद सुनहौ वड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पर ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनी, कहते पवित, सतगुर रहा भर उरे, बिनो मंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनुहाद तुरे, सुनते पुनी, कहते पवित, सतगुर रहा पर उरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनुहाद तुरे। मुंदा मणि महला पंजवा, थाल विच दिन वस्तु पइयो, सत्य संतोख विचारो, अमड़ी दी नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे अधारो, जेको खावे जेको पंचाय, तिसका होए अधारो, एहे वस्त जी नहीं जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिये, सब नानक ब्रह्म पसर। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पायोई, तरस पाया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरेया, तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरेया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहर दास, जियो पिंड सब तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने उचे ते उच।

स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ की शरण सगल पैला थे दुख बिन से सुख पाया दयाल होआ पर ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया

गुण गावो रंग रत्ता रहौ सतगुर नाम निधान दृढ़या चिंता सगल बनासी कर कृपा अपनों कर लीना मन वस्या अबनासी ताको बिगन ना को लागे जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छा पुजाई

कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की इच्छा पुजाई नानक दास ताके बलहारे जिन पूरन पैर रखाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

के महान योद्धे जड़े आ फिर बेनती सुन लियो, ये गुरु महाराज जी जंग नहीं करना चाहते पर वो जान बुझ के करा चाहते है। गुरु महाराज नूं कोई शौक नहीं है। गुरु साहब तो आनंदपुर साहब आराम नाल बैठे हुए गुरमत का प्रचार कर रहे हैं, संत और सिपाही दे मीरी ते पीरी दे गुण महाराज जी वंड रहे हैं। कोई किसी नाल वैर नहीं, कोई किसी प्रति ईरखा नहीं, पर ये बाई धार दे जिहड़े राजे ने ये जान बुझ के महाराज नाल वैर कमाउणा चाहुंदे आ। जान बुझ के ये सेना अपनी इकट्ठी करके आनंदपुर साहब

बंचत सिद्ध को बिद मिलायो, पूरन पो मन ठोर बसो रस, बासन ज्यों बासन स्यों ज्यो दंग दिसतायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन।

लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख शिफारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्त

एक सुर असुर गण तरह तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत

बिनत करूं अरदास, सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्स मन चाओ, भगत एह मन ठहरावे, बल्यो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी इक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म, प्रगट सगल